0: Ici CFMB 1280 Radio Montréal, une station de communication Evanov.
1: अच्छा अक्सर ऐसा होता है कि अभी तो कामयाबी की सीढ़ी के पहले कदम पर ही होते हैं, अभी तो नाम मात्र ही कुछ अचीव किया होता है कि that tiny little bit of success shoots up and goes to your head. और आफ्टर इफेक्ट क्या होता है कि इस बीच आपकी नजर, आपका फोकस अपने टारगेट से हट जाता है. बट ऑलवेज रिमेम्बर कि हवा में ताश के घर नहीं बनते, रोने से बिगड़े मुकद्दर नहीं बनते. दुनिया जीतने का हौसला रखिए जनाब, क्योंकि सिर्फ एक छोटी सी जीत से सिकंदर नहीं बनता.

0: ਆਫ ਪੰਜਾਬੀ ਚੁਟਕਲੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਚਟਪਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ
1: ਇਹੋ ਸੁਣਦੇ ਯਾਰ ਰੋਜ਼ ਰੇਡੀਓ ਤੇ
2: ਸੁਣੋ ਸਾਡੇ ਯੂਟਿਊਬ ਚੈਨਲ ਕਲਚਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ
3: ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੇ ਲਈ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕੀ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ खुलकर हंस पाना बड़ों और इंटेलिजेंट लोगों की रिस्पेक्ट गेन कर पाना और बच्चों का प्यार जीत पाना लोगों में अच्छाई ढूंढ पाना दुनिया को अच्छा बनाने में कोई योगदान दे पाना चाहे वो पेड़ लगाना हो चैरिटी करना हो ये जान पाना महसूस कर पाना कि आपके आसपास के लोगों की जिंदगी बेहतर हो पाई क्योंकि आप उनके साथ थे मेरे लिए ये है कामयाबी फॉर मी दिस इज द लिटरल मीनिंग ऑफ द टर्म सक्सेस

I'm not just going to be another face in the crowd. मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है. भीड़ में लाखों चेहरों में गुम एक आम सा चेहरा. और क्यों बनूं मैं एक आम सा चेहरा जबकि मैं और मेरा मन दोनों ये जानते हैं कि मैं खास हूँ, बेहद खास. पर सिर्फ ये पता होने से बात खत्म नहीं होती है, क्योंकि मुझे यकीन करना होगा खुद पर, अपने टैलेंट पर, अपनी खूबियों पर. तब जन्म होगा मेरा दोबारा से. I know I'm not going to live forever. That's why I'll make this life the way I want it.

fight till you drop. Never stop. Don't give up till you reach the top because you're the best. और अगर वाकई में वो बेस्ट वाला एटीट्यूड है आप में तो फिर कोई भी छोटे मोटे सेटबैक्स आपको हिला नहीं पाएंगे क्योंकि जो बेस्ट होते हैं ना वो इतनी जल्दी हार नहीं मानते क्योंकि जो बेस्ट होते हैं ना वो चाहे हजारों बार गिर जाएं वापस अपने पांव पर झट से खड़े हो जाते हैं क्योंकि गिर के हार के फिर से उठ खड़े होने का जज्बा इज नॉट अ मैटर ऑफ स्किल और टैलेंट इट्स अ मैटर ऑफ डिसीजन एंड गट्स एंड यू हैव टू डू इट बिकॉज़ यू आर द बेस्ट।

0: पंजाब ट्यून इन करने के लिए आपका धन्यवाद।
1: कुछ लोग हैं जो इंसान को इंसान नहीं समझते और कुछ अल्फाजों में भी इंसानी रूह डाल देते हैं। मसीहा हो तभी जज्बात की धड़कन को फौरन जान लेते हो, कभी अल्फाज के नब्जों को अपनी नर्म सांसों से छूकर भूल जाते हो कि इन लफ्जों के सीने में भी आखिर दिल धड़कते हैं, ये बात करते हैं, सुनो आवाज देते हैं, ये जज्बे सांस लेते हैं। तो जब तुम दूर जाते हो, जब इनको भूल जाते हो, तो धड़कन रूठ जाती है, तो नब्जें डूब जाती हैं, ये सांसें टूट जाती हैं। मसीहा हो तो फिर इनको शिफा तुम क्यों नहीं देते।

0: कल्चर ऑफ पंजाब से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बेहद शुक्रिया।
1: चल मेरे साथ ही चल, ए मेरी जान ए गजल, इन समाजों के बनाए हुए बंधन से निकल चल। हम वहाँ जाएं जहाँ प्यार पे पहरे न लगे, दिल की दौलत पे जहाँ कोई लुटेरे न लगे। कब है बदला ये जमाना, तू जमाने को बदल चल। अपने मिलने पे जहाँ कोई उंगली न उठे, अपनी चाहत पे जहाँ कोई दुश्मन न हंसे। छेड़ दे प्यार से तू साज़े मोहब्बत ए गजल, चल चल मेरे साथ ही चल। वेल, दिस केम फ्रॉम द ग्रेट राइटर नीदा फाजलीज़ पेन। वेरी प्योर, वेरी डीप, वेरी इंटेंस।

0: You're listening to Culture of Punjab. We are changing Canada one person at a time.
1: हम तो मसरूफ थे अपनी तन्हाइयों में, मुद्दतों बाद इतने प्यार से किसी ने पुकारा है। एक पल ठहरे, रुककर सोचने लगे, इतना मीठा तो कभी अपना नाम न था, क्या सच में ये नाम हमारा है? ये सच है, रेगुलरली रूटीन में बस ऑर्डिनरी सा लगता है खुद का नाम, इनफैक्ट खुद का इंटायर वजूद ही। बट जब वो खास इंसान आपके नाम को प्यार से पुकारे तो अपना नाम भी खास लगने लगता है ना?

आज हम हैं, कल हमारी यादें होंगी, जब हम ना होंगे तब हमारी बातें होंगी। अगर कभी पलटोगे जिंदगी के ये पन्ने तो शायद आपकी आंखों से भी बरसातें होंगी। जी हाँ, यकीनन बरसातें होती हैं, बट सिर्फ उन लोगों की याद में जो अपनी जिंदगी को एक अलग परिभाषा देकर जाते हैं। हम आप जैसे ऑर्डिनरी लोग जो अपनी जिंदगी सिर्फ अपने लिए जीते हैं, हम ये उम्मीद रखें कि हम ना होंगे तो कोई हमें याद करेगा, गलत एक्सपेक्टेशंस हैं।

कल्चर ऑफ पंजाब आपका डेली एंटरटेनमेंट डोज। खामोश रात है, साहिलों का साथ है, कोई दिल के करीब तो किसी के दिल पास है। सफर तन्हा है, फिर भी दिल में कई जज्बात हैं। कभी खुशियों की महफिल, कभी गम की बरसात है। यही है जिंदगी की हकीकत कि कहीं महकती सुबह तो कहीं अंधेरी रात है। वेल दैट्स वेरी ट्रू, क्योंकि कभी भी जिंदगी एक सी नहीं रहती। उतार चढ़ाव, दुख सुख आते ही रहते हैं, चाहे हम इनसे कितना भी भागने की कोशिश करें, 'cause they are the part and parcel of our existence।